अहन सुसहज सुबाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए उवे सिफत खसम दी नूर अरसोह कुरसोह चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सत संगिया। आसा मनसा सगल पूरी प्र अंक अंक मिलाई। बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई। आसा मनसा सगल पूरी प्र अंक अंक मिलाई। बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिन उपाई, कर कर देखा कीता अपना, ज्यों तिस दी वड्याई, जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई, सो पात साहौ साहा पत साहेब, नानक रहन रजाई। आसा महला पहला, सुन वड्डा।

कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया,

रहाइया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती परे तेरे भंडारा। जिस तू दे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला।

की मत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना ओ मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए। जेवड आप तेवड तेरी दात, जिन दिन करकै कीती रात। खसम विसार है ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सत गुर सत पुरखा। बिनो करो गुर पास,

राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मैं जंत उपाए ताका रिजक आगे कर तरया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाऊ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मान पाओ करिया ऊडे ऊड आवे सह कोसा तिस पछे बचरे शरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख इको ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे

तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवा है जो सेवा है तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह है हर त्यावह है तुद जी, से जान जुग मैं सुख वासी। से मुकत पए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपहो जिन हर निरपहो त्याया जी, तिन का पहो सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी।

चौपाई। हमरे करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कावहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिय, सब बैरन को आज संगरिय, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक से

निवरिय। हुजो सदा हमारी पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दोष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कार विषन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप आपुनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम।

उपेवन पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत महामूड काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा

भाव कही पूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पयो संक्र इकैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो।

आय हाय। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा।

गलां समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किश है, जिस देहे सो पावे सदा सिफत।

पौड़ी। तिथै तू समर्थ जिथै कोई नाहे, ओथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड जाहे, पहु जल बिखम असगाहौ गुर शब्दी पा।

पाल संभाले साहे साहे व्यर्था कोई न जाए जे आवै तू दयाहे। सलोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाउ नेत्री सत गुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाउ सत।

सुनिहाल सत्रियाकाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैत श्री महला पंजवां, शांत घर पहला एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद सलोक, दर्शन प्यासी दिन सरात। चितवाओ आन दिन नीत, खोल कपाट गुर मेलिया। नानक हर संग मीत। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह। आप सत्कार योग सारसंग जी महाराज बख्शी की आप संगत ने बाद दोपहर के कीर्तन प्रसारण किए ने। ऐसे संत समा जान के सोधा रहस साहब के प्रसारण किए हैं। अरदास सुझा जी भरी ने महाराज बख्शे पुत्र परमेश्वर किए हैं। सो शास्त्री राज जस पाठ समा गुरु साहब ने आप गुरमुखात्म बख्शे किया है। और सत्संग जी श्यामत की राम हो रहे हैं जिस सतमार कीर्तन कर भाई मनमोहन सिंह जी आरती कीर्तन नाम सिंह द्वारा आप सब संगतान ठीक 7 बजे तक महाराज सत्या जुड़ने वास्ते महान पुराला करेंगे। 7 तों लैके 8:30 कीर्तन करेंगे अखंड कीर्तन जथा दे सारे रागी सिंह वालों। सो सत्संग जी ठीक 8:30 तक सब संगत बेनती है कि महाराज निकी गोद में बैठ कर श्यामत सारे कथक की दरबार सरण करके जीवन दिन कड़ियाँ सफला करो। सत्संग जी आप संगत पता है कि जो गुरुद्वारा साहब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है साउथ हाल से नॉर्थ हाल का वेच काफ़ी माया लग रही है। सो सत्संग जी महाराज बख्शिश है बेअंत परिवार वालों बेअंत माया। सो गुरु घर संगत भेटा कर रही ने तो बटपागे हैं। सत्संग जिन्हें जिन्हें अज तक माया भेटा नहीं की सारे बेनती है कि जरूर माया अपना दसंद कट के गुरु कर दौ तो अपने जीवन जड़ियाँ सफला करो माया सफल करो। सत्संग जी आप संगत बेनती है कि हर एतवार आप संगतान बेनती है कि 12:50 से जरूर कथा आप सबू करके जाया करो। सत्संग जी आप संगतान बेनती है कि 11 तों लैके 17 तक कथा करे भाई भिंद्रपाल सिंह जी विद्वान भी। तो सत्संग जी जरूर 11 तों 17 तक हाजिया भरो समय ठाल ग्रंथ करो। तो सत्संग जी मई बारह नु है सरहद फतेह। बाबा बंदा सिंह जी ने सरहद फतेह करके उतों की इंटरनेट रिकॉर्ड दस्या कि जुल्म किवें करीदा। सत्संग जी संग्रांद है जेठ के महीने की 15 मई नू। तो मई 17 नू है छोटा कलूकारा कानूआन के शंभ वाला गुरदासपुर के जिले। तो सत्संग जी उस कलूकारे तकरीबन 10-12 हज़ार सिंगणिया बच्चे शहीद होए सन। तो जिन्होंने उस समय जो सरकार का हुक्म सी कोई भी सिख गुरु का प्यारा नजर नहीं होना चाहिए तो उस वेले उन्होंने जुल्म तो बचा करने वास्ते सब संगत ने जो गुरुद्वारा सिंह ने डाल दिया फौजा ने जंगलों का सहारा लिया। तो कानू आते शंभ जंगल से जरा उत्थे या कुपहेड़ा के जंगल में उन्होंने जाके अपने डेरे लाए। सत्संग जी तो उस समय जो फौजा सन वो जंगलों नहीं सन जाए डाल दिया सिंह को उन्होंने फिर जंगल में अग ला के एक पासे फौजा बेहद फौजा कट्ठिया करके किया। सत्संग जी मई 5 है मेमोरियल डे आप संगत हालियां भरनिया ने। मई 27 तो लैके 31 तक कीर्तन करे भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर बारे। मई 27 तो 31 तक संगतन हालियां भरनिया ने। सो जून 2 है जन्म संत बाबा जरनैल सिंह जी पिंडरा वाले का उस दिन भी जरूर हालियां भरनिया ने। उन्होंने जो शहद दी साडे वास्ते उन्होंने याद करिए। भाई साहब भाई मनमोहन सिंह जी तैयार ने मैं उन्होंने बेनती करांगा वो कितने रम कर नहीं सारे सरण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है। जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै करुणा उन दयावै ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु

हलत पलत मुख उजल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहा। जह हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी, वड भागी हर

ਜਹਿ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਹਿ ਉਪਾਧ ਗਤ ਕੀਨੀ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇਨਾ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਏ ਨਮਹਿ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਓ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਓ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਵਿਸ਼ਵੰਭਰ ਏਕੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਖਰ ਕਿਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕਾਖਰ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਨਕ ਕੁਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨ ਸਹਿ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਨਉ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ। ਸੇ ਸਿਮਰਹੇ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤੀ ਊਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛੁ ਸੁਝੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮ੍ਰਿਤ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੇ ਸਾਧਕੀ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਬੇਮੋਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ ਬਿਨਾਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸਦਬਲਹਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸੁਖ ਵਿਹਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਅਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਵਸੈ ਹਰਨੇਰੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮੂਨਾ ਝੂਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਚਲ ਆਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੁਲਕਾਰ। ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾਂਤ ਨਾ ਪਾਰ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਮਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਣੀ ਪਇਆ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਵੇਦ ਉਪਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਪੰਜਨਾ ਕਾਟੇ ਕਾਟੇ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਤ ਅਸ਼ਟਪਦੀ।
जय मात पिता सुमित ना भाई मनुहा नाम तेरा संग सहाई जय महाप्या दूत जमदल तह केवल नाम संग तेरा चलै जय मुश्किल हो वह भारी हर को नाम किन माहे उधारी अन पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव हो सुख नेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपतो सुखिया लाख करोरी बंधन पर हर का नाम जपत निस्तर है हनिप माया रंग तिक न बुझावे हर का नाम जपत आगावे जे मार्गे जाति केला ते हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा तिहाई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लखबाही नाम जपत पार पराही अनक बिगन जाय सिंगार हर का नाम तत्काल उधार है आनिक जोन जन्मे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हम मेला मलकबूना धोवे हर का नाम कोट पाप खोवे ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाई है साध कै संग जिहे मार्ग के गने जाहे ना कोसा हर का नाम हुआ संतोषा जिहे पैंडे महा अंत गुबारा हर का नाम संग जियारा जहां पंथ तेरा को ना सियानू हर का नाम ते नाल पछानू जय माँ भयान तपत बहु काम तैर के नाम के तू ऊपर छाम जहात रिखा मन तु जाग रखे तय नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की वर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम द्रे जन कोट हर जस कारत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नोदान मन तन रंग रते रंगे कै नानक जन कै बिरत विवेक कै हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जप कपरै न भंग हर का नाम जन की वड़ियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन कौ भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि वियोग जिन रात हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन कै मालिक जीना हर तन जन कौ आप प्रभु दीना हर हर जन कै ओट सताणी हर प्रताप जन अवर ना जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त भव करे नानक जन संकेते तरे पार जाते और को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सत्य उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग उड़ पागी पाई है संत की सेवा नाम त्याई है नाम तुल कछव न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे सर्व टंडोल पूज स्नाही हर हरे नानक नाम मोल अष्टपदि जाप ताप ज्ञान सब ध्यान कर शास्त्र सिमरत व्याख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सकल त्याग मन मदि फिरिया अनेक प्रकार की ये वो जितना पुण्य दान हो में भो रत्ना शरीर कटाय हो में कर राति वर्तने में करे वो पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौकण पृथ्वी फिरै चिर जीवे माँ उदास तपी सर थी वह अग्न माय हो मत प्राण कर्ण का सब है और पूर्ण दान न्योली कर्म करे वो आसन जैन मार्ग संजय मत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तो पीहो मैं मैल ना जावे हर के नाम संसर कचनाए नान गुरमुख नाम जपत गत पाए मन कामना तीर्थ दे छुटै गुरु माना मन ते होटै मन कामना तीर्थ दे छुटै गुरु माना मन ते होटै सोच करे दिन सर रात मन की मैलना तनते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते को ना विक्या ट्रै जल तो वह बहुत दे नीत शुद्ध का हो काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम उदरे पतित बहु मूच बहुत श्याण जमका पो व्या पैनक जतन कर तृष्ण नाथ रापे पेख अनेक गन्ने बुझे कोट पौधर गहने सीजे छूट सुनायु प्यार मोहे व्यापे माया जाल और करतूत सगली जम डान गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान हर का नाम जपत को जाए नानक बोले सह सुबह चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम दे दहशत गावे जे को अपनी शोभा लो रे साध संगी हो मैं छोरे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरणी परे जिस जन को प्रभु दर्स प्यासा नानकता कै बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साथ सुन जा कम टे मान आपस को जो जाने नीचा सो गुनी है सब ते ऊंचा जा का मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन काट काट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पे कै सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन संदृष्टिता नानक पाप पुन नहीं ले पाप निर्तन कहो तन तेरु नाव निथावे को नाव तेरा थौ निमान्य कहो पर तेरु मान सकल कटा कहो देहो दान
ਕਨਕਰਾਉਣ ਹਾਰ ਸਵਾਮੀ ਸਲਕਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਆਪਣੀ ਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਹੂੰ ਆਪ ਆਪਨ ਸੰਗਾ ਪ੍ਰਭਰਾਤੇ ਤੁਮਰੀ ਉਸਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੋਏ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰ ਮਤਮਲ ਹਿਰਿਆ ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਪਲਾਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋ ਜੀ ਸਦਾ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉਤਮ ਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜੇ ਘਟ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰਿਆ ਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤੇ ਚੀਤਰਕ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੌਣ ਮੂਲ ਤੇ ਕੌਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਨੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ ਗਰਭਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਬਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਤ ਪਰ ਜੋ ਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੋਧ ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸਹਿਨ ਮੁਖ ਪਿਆ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੁ ਨਾ ਬੁਝੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸਿਜ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਪਸੈ ਸੁਤ ਪ੍ਰਾਤਮੀਤ ਬਨਿਤਾ ਸੰਘ ਸਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀ ਵੈਸੀ ਤਰ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਇ ਪਵਨ ਪਾਉ ਕਮੁੱਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸੁਰ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸੁੰਗਰੀ ਸੰਸਾਦ ਵਸਾ ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਭਾਵ ਕਰਨ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਿਸ਼ੈ ਤਿਆਗ ਔਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਦਿਆ ਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਦੰਤ ਜੋ ਰੱਖਣ ਵਾਰ ਤਿਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਗਵਾਰ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇ ਜੋਟਾ ਕੁਰਸਤ ਸਦਾ ਅਜੂਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਣ ਤਦੂਰੇ ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੇ ਤੇਰੇ ਖੇਮਾਂ ਤੇ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਕਤ ਜਾਣ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਭੂਲਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਸਾ ਛੋਟ ਛੋਟ ਸੰਗ ਮਚੈ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੈ ਜੋ ਹੋਣ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਾਹਿ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ ਚੰਨਨ ਲੇ ਪੁਤਾਰੈ ਤੋਹੇ ਗਰਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਪਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ ਅਨਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਵਿਕਰਾ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਹਾਰ ਦੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਛਪਸ ਨਾਹੇ ਕਚ ਕਰਿਆ ਛਪਾਇਆ ਬਹਾਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਕ ਸਵਾਨ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਹਾਰ ਤਨ ਸੁਹਾਗਲ ਪਾਤਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਥਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਨਾਨਕ ਤੀਜਨ ਸਹਿ ਸਮਾਧ ਸੁਣਦਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ ਕਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਭਾਵੇ ਕਹਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝੇ ਡੋਰਾ ਨਿਸਕਹੀਏ ਤੋ ਸਮਝੇ ਭੋਰਾ ਕਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦਗਾਵੇ ਗੁੰਗ ਜਤਨ ਕਰੇ ਤੋ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂੰ ਉਸ ਗੌਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਸੁਹਾਵੇ ਨਾ ਚੀਤ ਜੋ ਵੈਰਾਈ ਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਬੁਲਵਾ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਤਰ ਵਸੈ ਅਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ ਦ੍ਰਿੜਕਰ ਮਨ ਨੇ ਮਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨਾਵੇ ਮੂੜੇ ਚੀਤ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਤ੍ਰੋਹ ਯਹਾਂ ਹੂੰ ਜੁਗਤ ਬਿਆਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਤੁਮ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮ ਰਾਮ ਤੂੰ ਚਿਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੁਤਰ ਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਆਨ ਸੁਆਏ ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੀ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਪਤ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੇ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ ਇੱਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੇ ਏਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ ਦਸ ਪੀਹਰ ਲੇ ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਚਿੱਠਾ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾ ਕਹੋ ਕੀ ਜੈ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਭ ਸੁਖਤਾ ਹੂ ਮਨ ਉਠਾ ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਭ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਅਗਨਤ ਸਾਹੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੇ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਕਚ ਬੌਰ ਸਾਫ ਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੇ ਬੌਰਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ ਉਸਤੇ ਚੌਗੁਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਅਨਿਕ ਪਾਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ਸਰ ਪ੍ਰਭੂਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਉਹ ਬਿਨ ਸੇਵ ਮਨ ਪੁਛਤਾਵੇ ਚੌਧੀ ਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨ ਹਾਰ ਲੁੱਟ ਰਿਹੋ ਤੈ ਲਪਟ ਰਿਹੋ ਤਹਿ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ ਬਟਾਓ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨੇ ਤਾ ਕੋ ਆਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕੀ ਮਨ ਰਖੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੁੰਬ ਸਭਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਹਉ ਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਵਨ ਧਨ ਮਾਲ ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸੋ ਵਸਤਰਾ ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਭੇਖ ਹਸਤਾ ਮਿਥਿਆ ਤਰੋ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉਪਰ ਕਰਤ ਬਮਾਨ ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧਕੀ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਿਥਿਆ ਸਰਵਨ ਪਰਨਿੰਦਾ ਸੁਨੇਹ
मिथ्या हस्त पर द्रव कौ हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चन पर विकार कौ तावह मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बासलेत विकारा बिन बुझे मिथ्या सब पहे सफल देहे नानक हर हर नाम लये वृथि सागत की आर्जा साच बिना कह होत सुचा वृथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन वृथा विहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन वृथे सब काम जो कृपन के निरार्थ धाम तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाऊ नानक ताके बल बल जाऊ और रहत अवर कचौर कुमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंढ लावत जानन हार प्रभु परवीन बार पेखना काहू पीन अवर उपदेश आप ना करे आवत जावत जन्मे मरे जिसके अंतर बसे निरंकार इसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने तिन प्रभु जाता नानक उन जन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना की आप माने आप हे आप करतनी बेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव श्याम सगलती रहत सबकत जाने आत्म की रहत जिस पावे तिस लय लड़ लाए थान तनंतर रह समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिंस जाए अंग में नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जय प्रसाद चित्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे जय प्रसाद सुगंधत तन लाव है तिस कौ सिमरत परम गत पाव है जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे तिहाय सदा मन मंदर जय प्रसाद गृह संग सुख वसना आठ पैर सिमरो तिस रस नाम जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा तिहाई है तिहावन जोग जय प्रसाद पाठ पुटम्बर हंडाव है तिसे त्यागत और लुभाव है जय प्रसाद सुख से सोई जय मनोहर पैरता का जस गावी जय जय प्रसाद सबको माने मुक्ता को जस रसन मखाने जय प्रसाद तेरो रहता तारम मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब तरग है मान पाव है नानक पत से ती कर जाव है जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लाहो श्राम स्नेही जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छेद ठाके मन सुनी पर ठाकुर प्रवता के जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानकता की भगत करे जे प्रसाद आप भूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद सब हस्ता सुवारी मन तिस प्रभु को कभूना विसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रोहे प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सद तिसहत्याए जो एक लख है इहां उहां नानक तेजी रख जे प्रसाद गृह पुन बहुदान मनो आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पात रह गुर प्रसाद नानक जस कहे जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद देखे विस्मात जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे वसना जे प्रसाद हर्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सहज समाव है ऐसा प्रभु त्याग और कतला गहो गुरु प्रसाद नानक मन जागहो जय प्रसाद तुम प्रकट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ता कहो जाप जय प्रसाद तेरे काज पूरे तिसह जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पाव है साच रे मन मेरे तू ता सुराज जय प्रसाद सबकी गत हुए नानक जप जपे जप सोए आप जपाए जपे सोनाओ आप गवाए सोहर गुनगाओ
प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कौन विगास प्रभु सुप्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व निधान प्रभु तेरी मया आप कछु ना किन्हु लया जित जित लाभ तित लगे हरनाथ नानक इनके कछु ना हाथ श्लोक अगम गात पार न सोए जो जो कह सो मुक्ता होए सुनमीता नानक बिनवंता साजना की सज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटे अभिमान साध कै संग प्रगटे सुज्ञान साध कै संग बुझे प्रभु नेरा साध संग सब होत निबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बनने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभु माहेश्वरमानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल है साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पंचा साध संग हुए सब की रेन साध के संग मनोहर वैन साध के संग ना कथू तावे साध संग स्थित मन पावे साध के संग माया ते पिन साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साध के संग ना बीगा पैर साध के संग ना ही कुमंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग ना ही ताप साध के संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बनगाई साध के संग ना कब होता आवे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस्ता गोचर लहे साधु के संग अजर सह साध के संग बसे थान ऊंचे है साधु के संग महल पहुंचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु के कुर्बान साध के संग सब कुल उधार है साध संग साजन मित कुटुंब निस्तार है साधु के संग सो तन पावे जिस तन ते सब को और सावे साध संग तरम राय करे सेवा साध के संग शोभा सुरदेवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग नहीं कछ काल दर्शन पेट तोत निहाल साध के संग कलुकत हर है साध के संग नरक पर हर है साध के संग यहाँ हुआ सुहेला साध संग बिछड़ो तो हर मेला जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग ना मिर्था जावे पार ब्रह्म साध रित बसे नानक उदरे साध सुन रसे साध के संग सुनो हर नाव साध संगर की गुण गाओ साध के संग न मन ते विसरे साध संग सर पर निस्तर है साध के संग लग गए प्रभ मीठा साधु के संग काटे काट डीठा साध संग पे आज्ञाकारी साध संग गत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा वेद ना जाने जेता सुनहे तेता बखियाने जेता सुनहे तेता बखियाने साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा व्यंत साध की शोभा ऊंचते ऊंची साध की शोभा ऊंचते ऊंची साध की शोभा साध बनगाई नानक साध प्रभेद ना पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवरना पेख है एक कस बिन कोए नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल आलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व कौ शोक ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह तीर जीक जो सुधा कू खोद कू चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाह नानक जो पाओ का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मनो है प्रकाश जैसे तरु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र शत्रु समान ब्रह्म ज्ञानी कह ना ही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपने है सबते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रभु आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब उपरमया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया
ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास, ब्रह्म ज्ञानी का नई विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाह, ब्रह्म ज्ञानी कह नाई तंदा, ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सो फला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रसंग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परिवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी के हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का आदर्श बड़ पागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी का खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सकल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का उसदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय दाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात, ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी कांत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी का उसदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, और तारे जो अंतर नाम सर्व में देखे भगवान, निमुक निमुक ठाकुर नमस्कार है, नानक वो अपरस सगल निस्तार है, मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स, प्रत्यय रूप न पेख नेत्र, साध की टहल संत संगहित, कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस कौ मंदा, गुरु प्रसाद भिख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दोक ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा परस, वैष्णो सोज सुपर सुपर सन, पिसन की माया ते हुए पिन, कर्म करत हो वह कर्म, इस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दिल डैवरे नाम जपावे, नानक हो वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिन सह सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सात संग पापा मल खोवे, तिस भगवती कीमत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पय विसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नान कैसा भगवती भगवंत कौ पावे, सो पंडित जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्म महसोध है, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जोन न गावे, वेद पुराण सिमरत बूझे मूल, सुख में जाने स्थूल, चौना को दे उपदेश, नानक उस पंडित का उसदा देश, बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान, चौवरना में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत हुए, सात संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उतार है, पस प्रेत मुक्त पात्र का अवतार है, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत की तैना पाई है तारम, नानक तिस मिले जिस लिखिया तोर करम,
जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह प्रवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोझी परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभु की आज्ञा तमिता वह जीवन मुक्त सो कहावे, तैसा हर्ख तैसा उस शोक, सदा आनंद तह नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख काटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाव, जित जित कर राखे तैसा तिन नाव, आपे करन करावन जोग, प्रभा वै सोई फुन होग, पसरियो आप हुए अनत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा परगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल। श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची बहु विध अनेक प्रकार, अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन पर महदासी, कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपेश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कबकाल विचार है, कई कोट नवतर नाम त्यावे नानक करते कांत ना पावे, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंधा ज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अपगातम निकोर, कई कोट पर द्रव कोई रहे, कई कोट पर दुख ना करे, कई कोट माश्रम माहे, कई कोट प्रदेश ब्रह्माहे, जित जित लाहो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पौन पानी बै संतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सुर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सकल समग्री अपने सूत तार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरतर शास्त्र, कई कोट कीर्तन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरिमेर सूरन थीवे, कई कोट जख किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मिर्गाच, सब ते नेरे सब हूं ते दूर, नानक आप अलिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव में रहे, कई कोट भोजोनी फिर है, कई कोट बैठती खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पहाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभु के हाथे, कई कोट पह बैरागी, राम नाम संग तिन निवलागी, कई कोट प्रभु का खो जनते, आत्म है पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभु प्यास, तिन को मिलियो प्रभु अविनाश, कई कोट मांग है सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हुए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हुए अवतार, कई जुगत की नो विस्तार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एकंकार, कई कोट की ने वो पात, प्रवते हुए ब्रह्मा समात, ताकांत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म परगास, कई कोट तत के बेते, सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पी वहे, कई कोट नाम रस पी वहे, अमर पै सत सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म रस सुख सह समाव है, अपने जन को साथ साथ संहारे, नानक कोए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक कारण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहारण जल थल मैयल सोए, अष्टपदी कर्ण करावन करने जोग, ज्योतिष पावे सोई होग, किन में था पुता पुनहारा, अंत ने किस पारा वारा, हुक्मे तार दरावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे,
ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਮੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਮਾਨੁਗਤ ਪਾਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੇ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਹਾਂ ਸ੍ਰਿਆ ਕਾਲ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਖੇਲੇ ਵਿਕਸੈਨ ਤਰਜਾਮੀ ਜੋ ਪਾਵੇ ਸੁਕਾਰ ਕਰਾਵੇ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਉਣ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋ ਮਾਨੁਕ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਈ ਆਵੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਾਵੇ ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਚਲੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰੇ ਅਨ ਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਚੇ ਜੀ ਜਾਣਤ ਆਪਣ ਆਪ ਬਚੇ ਜੀ ਜਾਣਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੇ ਪਰਮੇ ਪੂਲਾ ਦੇ ਦਿਸ ਧਾਵੇ ਨਿਮਕ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁਟ ਫਿਰ ਆਵੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਸਭਨੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇਜ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਖਿਰ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੁ ਨਾ ਆਵੇ ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦੇਹ ਤਿਸ ਪ੍ਰਗਟ ਆਵੇ ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ੀਸ ਦਾ ਕਾਲੇ ਖਾਨਾ ਗਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ ਘੱਟ ਘੱਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਨਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵੇ ਦੇਖ ਪੜਾਈ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਾਹੀ ਸਾਧ ਕਨ ਕਰਾਉਣ ਸਭ ਕੋ ਨਾਥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਓ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨਕੀਓ ਕਬੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਵਸੈ ਕਬੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹਸੈ ਕਬੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਬੂ ਓ ਬਕਾਸ ਪਿਆਲ ਕਬੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾ ਵਣਹਾਰ ਕਬੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬੋ ਪਹਾਤ ਕਬੂ ਸੋਏ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬੂ ਮਹਾਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ ਕਬੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਦਰਵਾਲ ਕਬੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ ਕਬੂ ਖੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ ਕਬੂ ਪੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ਕਬੂ ਅਬ ਕੀਰਤ ਮਹਿ ਆਵੇ ਕਬੂ ਪਲਾ ਪਲਾ ਕਹਾਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵੇ ਹੀ ਰਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੇ ਕਬੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਵਖਿਆਨ ਕਬੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੇ ਧਿਆਨ ਕਬੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ਕਬੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ ਕਹੂੰ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ ਅਨਕ ਜੋਨ ਪਰਮੇ ਪਰਮੀਆ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੇ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਵਣ ਨਾ ਕੋਏ ਕਬੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਪਾਵੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁ ਨਾ ਗਾਵੇ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਮੰਤਨ ਨਾਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸਦਾ ਵਸੇ ਪਾਰ ਰਮ ਕੈ ਸੰਗ ਜਿਉ ਜਲਮੈ ਜਲਾਇ ਕਟਾਨਾ ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਇ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਬ ਗਲੇ ਅਸ਼ਪਦੀ ਇਸਕੇ ਅੰਤਰਰਾਜ ਮਾਨ ਸੁੰਦਰ ਪਾਤੀ ਹੋਤ ਸਵਾਨ ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ ਆਪਸ ਕਹੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੇ ਜਨਮ ਮਰੇ ਬੋਜੋਨ ਪਰਮਾਵੇ ਤਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਕੇ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੇ ਨਾਨਕੀਆ ਮੁਕਤਾ ਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਤਨੁਨਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾਵੇ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਰ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਹੁ ਲਸਕਰਮਾਨ ਖੂਪਰ ਕਰੇ ਆਸ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੇ ਬਲਵੰਤ ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਏ ਜਾਏ ਬਸਮੰਤ ਕਿਸੈ ਨਾ ਵਧੈ ਆਪੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਮਹਾਨ ਸੋਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੋ ਧਾਰੇ ਸੰਪਾਵੇ ਸਦਲੇ ਵਿਰਥਾਰੇ ਅਨਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨਰਕਸਰੂਪ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ਆਪਸ ਕਹੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਸਰਵ ਕਿਰੇਨ ਜਾ ਕਮਨ ਹੋਏ ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਧਾਰੇ ਕੁ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨੇ ਚਲਨਾ ਹੀ ਜੀਤ ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋਂ ਛੁੱਟੈ ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋਟ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਗਾਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਵੈ ਕਪ ਕਪ ਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੂ ਰਾਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਕਾਜੈ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬੜਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਉ ਨੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ
इसके हाथ कहाँ विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा हुए, आप ही आप प्रभ सोए, जो किच किनो हो सो अपने रंग, सब ते दूर सबू के संग, बुझे दिखे करे विवेक, आप है एक आप है अनेक, मरे ना बिन सह आवे ना जाए, नानक सधीर हसमाए, आप उपदेश समझे आप, आपे रचया सब के साथ, आप किनो आपन विस्तार, सब कछ उसका ओ करने हार, उसते पिन कहो कि छोए तांतरे कैसोए, अपने चलित आप करने हार, कौतक करे रंग आपार, मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन ना जाए, सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी, सच सच सच सब की ना, कोट मधे किने बिल्ले चीना, पला पला पला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी, काटे काट सुनी सर्वन बख्यानी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, श्लोक संत सरण जो जन प्रै सो जन उदरनहार, संत की निंदा नानका बहोर बहोर अवतार, अष्टपदी संत के दुखन वार जा कटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत हुए मलीन, संत के दुखन सोबाते हीन, संत के हते को रखे ना कोए, संत के दुखन थान प्रष्ट हुए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन काग जो लवे, संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगित जोन किरमाए, संतन के दुखन तृष्णा मह जले, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का था को नाहे, नानक संत पावे ता होए पीगत पाहे, संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक किन टिकन ना पाई, संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीनु, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दुख में दोक, नानक संत पावे ता उसका भी हुए मोक, संत का दुखी सदा प्रित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुखते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाव, नानक संत पावे ता ले मिलाए, संत का दुखी अदबीज ते टूटे, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान परमाइये, संत का दुखी उजड़ पाइये, संत का दुखी अंतर ते तो था, जो सास बिना मृतक की लो था, संत के दुखी की जड़ किस ना है, आपन बीज आपे ही खाए, संत के दुखी को अवर ना रखनहार, नानक संत पावे ताले ओबार, संत का दुखियों बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पावक ईंधन नहीं त्रापे, संत का दुखी चुटाई केला, जो बुआर तिल खेत माहे दुहेला, संत का दुखी त्रम ते रहत, संत का दुखी सदमिथ्या कहत, कीर्त निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावे सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप हुए जाए, संत के दुखी कौदर घे मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइये है,
संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत के दुख ना त्रिष्टे कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए। तया कृतना मेटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए। सब कर तिसके हो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करहो दिन रात, तिसे त्याव हो सास गिरास। सब कछ वर्ते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार। दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे। बड़भागी नानक जन से श्लोक, तजहो सियान सुरजन हो। सिमरो हर हर राय, एक आसर मन रखो। नानक दु परम पो जायपति, मानव की टेक प्रति सब जान। देवन को एक है भगवान, जिस कह दिया रह गाये। पूर्ण तृष्णा ला गया है, मारे राख है को आप। मन के किस ना ही हाथ, जिसका हुक्म बोझ सुख होए। जिसका नाम रख कंठ प्रोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए। नानक विघ्न ना लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार। कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना मृत पियो। सदा सोहेला कर ले जियो, नैनो पेकटा पुरकार रंग। साथ संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार्ग गोविंद। मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म सर्वन हर कथा। हर दरगह नानक उजल मथा, बड़ भागी ते जन जग माहे। सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार। से तनवंत गनी संसार, राम नाम जो करे विचार। से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख भूले हर मुखी। सदा सदा जान होते सुखी, एको एक एक पहचाने। इतुत की ओह सोझी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया। नानक तिने निरंजन जानिया, गुर प्रसाद आपन आप सोझे। तिसकी जान हो तृष्णा बुझे, साध संग हर हर जस कहत। सर्व रोग ते ओह हर जन रहत, अनदिन कीर्तन केवल बखियान। गृहस्थ में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आशा। तिसकी कटिये जम की फांसा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख। नानक तिसे ना लाग है दुख, जिसका हर प्रभु मन चित आवे। सो संत सुहिला नहीं डुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे। सो सेवक कहो किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया। अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया। गुर प्रसाद तप्त सब बुझिया, जब देखो तो सब किच मूल। नानक सो सुखम सोई स्थूल, नह किच जन्मे नह किच मरे। आपन चलित आप ही करे, आवन जावन दृष्ट गान दृष्ट। आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ, आप ही आप सकल में आप। अनेक जुगत रच थाप थाप, अविनाशी नाही किच खंड। तारण तार रहो ब्रह्मंड, अलख एव पुर प्रताप। आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत। सकल संसार उधरे तिन मंत, प्रभ के सेवक सकल उदाहरण। प्रभ के सेवक दुख विसारन, आपे मेल लय कृपाल। गुर का शब्द जप पहे निहाल, उनकी सेवा सोई लागे। जिसनो कृपा करह बड़ पागे, नाम जपत पाव है विश्राम। नानक तिन पुरख को उत्तम करमान, जो किच करे सो प्रभ कह रंग। सदा सदा वसे हर संग, सहज सुभाय होवे सो होए। करने हार पछाने सोए, प्रभु का किया जनमीठ लगाना। जैसा सा तैसा दिष्टाना, जिसते उपजे तिस माए समाये। ओए सुख निधान उन्हों बनवाए, आपस कहो आप दीनो मान। नानक प्रभु जने को जान श्लोक।

नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्या वह से त्यो गुण में जा को परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करह एक रंग नाना विद कीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलित करे खिन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नान कर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उधरे सुन सरवन कर कृपा जिस आपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत्या का सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत्या की वाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर हृदय प्रवेश सत नृत बुझ जे कोए नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी श्रेष्ठ सो करने हार अवरना बूझ करत विचार करते की मित ना जाने किया नानक जो तिस पावे सो वर्तिया विस्मन विस्म पहे विस्माद जिन बुझिया तिसाया स्वाद प्रभ कै रंग राच जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाके संग तरे संसार जिनका सेवक सोड पागी जिनके संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आदि सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यावनुहार आप सत सत सवतारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार कौ सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जाकै हृदय विश्वास प्रभु आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पहते निरपहु हुए बसाना जिसते उपजया तिस माहे समाना बस्त माहेले बस्त गडाई ताको पिन्ना कहना जाई बुझै बुझनहार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभ पालनहारा सेवक की राह कै निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ तहारे नानक सो सेवक सास सास समारे अपने जन का पर्दा टाके
अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को देव डाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत राखे है ताकि गतमित कोई ना लाख है, प्रभु के सेवक को ना पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक धै दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मह कल राख है, नीकी कीरी मह कल राख है, पसम करे लश्कर कोट लाख है, जिसका सास ना काटत आप, ताको राखत देकर हाथ, मानस जतन करत बोपात, तिसके कर्तव्य थे जात, मारे ना राखे वरना कोय, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रबल अकविदानी, बारंबार बार प्रभु जपी है, पी अमृत इहु मन तंत्र पी है, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके चवर नाही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जन तृप्ता ने, मन तन नामे नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम, बोलो हो जचे बा दिन रात, प्रभु अपने जन की नींदात, करह भगत आत्म के चाये, प्रभु अपने शो रह समाये, जो होवा होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुकुम पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक ना जानो, आठ पहर प्रभु बसहे हजूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले, मन तन अपना तिन जन देहे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसका दर्श सब पाप मिटावे, अवर सियान सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान ना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसते संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरे, गुर बचनी हर नाम उचरे, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटे, सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वडभागी हे, सतगुर सिख का हलत पलत सवारे, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारे, गुर कै गृह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस कौ कर कच न जनावे, हर हर नाम हृदय सद त्यावे, मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक की कार्ज रास, सेवा करत होए नेकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस विश्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक कहे आप नहीं कच परम, सहस्यांत लया ना जाइये, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइये, सफल दर्शन पेकत पुनीत, पार्षद चरणगत निर्मल रीत, पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करन आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अखियो जा का मंत्र,
अमृत दृष्ट पेखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जेभा एक उस्तत अनेक जेभा एक उस्तत अनेक सतपुरुष पूर्ण विवेक कहूं बोलना पहुंचत प्राणी अगमो गचर प्रभु निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने ना पाई अनिक भगत बंधन नित करहे चरण कमल हृदय सिमरहे सदबलहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने एहो रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक का दे मोह माया कै संग ना ले मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख तहते नासे तप्त माहे ठाड वरताई आनंद पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पहु चुका निरपहु होए बसे सगल व्याध मन तेख है नसे जिसका सा तिन कृपा तारी साध संग जपना मुरारी तित पाई चूके परम गवन सुन नानक हर हर जस सरवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभु आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दू जाना ही कोए सर्व निरंतर को सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पे प्रकाश साध के संग रचे रचनांग अपनी कलतारी अनेक बार नानक बलिहारी अनेक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ ना चाले बिन भजन बिखिया सगली छार हरे हरे नाम कमावना नानक यहो तानुसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नामाधार और पाव समित विसार हो चरण कमल हृदय में और तार हो कर्ण कारण सो प्रभु समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत इहो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आसरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन का उचार कुंट उठता वहे सो तन हर सेवा ते पावहे जिस सुख को नित बाछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे फली करनी सा शोभा पज हर की सरणी अनिक उपावी रोग ना जाए अनिक उपावी रोग ना जाए रोग मिटे हर औखद लाए शरम निधान में हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन पर बोधो हर कहनाए दह दिस्ताव तुआ बैठाए ताको बिघन न लागे कोए जाके हृदय वसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ पोविन से पूर्ण हुए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए वसे अविनाशी कौ नानक काटी जमफासी तत विचार कह जन साचा जन्म रह सो काचो काचा आवा गमन मिटे प्रभु सेव आप त्याग शरण गुरुदेव एवं रतन जन्म का हुए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनिक उपावना छुटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करहु मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संगना चालस तीरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुतमीत कुटुम्बर बनिता इनते को तुम कौन सुना था राज रंग माया विस्तार
इनते कहो कौन छुटकार। अस तीरथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना, ना बिसा नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बॉडू बेस्याने। हर की भगत करो मनमीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चन कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिक जाहे। आप जब पोवरा नाम जपाहो, सुनत कहत रहत गत पाहो। सार पूत सतर को नाव, सह सुबह नानक गुनगाओ गुनगाओ। तेरी उतर सुमैल, बिन सजाए हो मैं बिक फैल। होए अचिंत वसे सुकनाल, सास किरा सर नाम सुमाल। झाड़ श्याम सगली मना, सात संग पावे सचत नाम। हर पुंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगह जयकार। सर्व निरंतर एको देख, को नानक जाके मस्तक लेख। एको जप एको साला, एक सिमर एको मन गाहे। एक हसके गुण गाओ अनंत मंथन जाप, एक भगवंत एको एक एक हर आप। पूरन पूर रहो प्रभ्याप, अनेक विस्तार एक ते पहे। एक अराध प्राचत गए, मन तन अंतर एक प्रवराता। गुरु प्रसाद नानक की जाता श्लोक। फिरत फिरत प्रभु आया, पर्यात अवसर नाए। नानक की प्रभु बेनती, अपनी भक्ति लाष्टपदी। जाचक जन जाचे प्रवदान, कर कृपा देवो हो हर नाम। साजना की मांगो तूर पार, परमेश्वर दा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गाओ, सास सास प्रभु तुम्हें त्याओ। चरण कमल सुमला के प्रीत, भगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रसार। प्रभु की दृष्ट महा सुख होए, रस पावे बिरला कोई। जिन चाख्या से जन तृप्ताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुपर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध के संग। परे शरणान सब त्याग, अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग। बड़ भागी जपिया प्रभु सोए, नानक नाम रिते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पही, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन कौ प्रभु होए दयाल, सेवक किनो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इस पुनी सरदा सब पूरी, रव रहा सत्संग हजूरी। इसका साथ किन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाये। सो क्यों बिसरे जे काल ना पाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किच दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे, गुरु प्रसाद को बिरला लाख है। सो क्यों बिसरे जे विकते काट है, जन्म जन्म का टूटा गांड है। गुरपुर है तते है बुझाया, प्रभु अपना नानक जंत आया। साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो और है नाम जपाओ। भगत पाए तरिये संसार, बिन भक्ति तन हो सी छार। सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होत नास, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मंत्र अंतर ही सुआओ। नेत्रो एक दर्श सुख होए, मन बिकसे साध चरण तोए। भगत जना के मंथन रंग, बिरला को पावे संग। एक वस्त दीजय करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं ना जाए, नानक रहा सर्व समाये। प्रभ बक्षंद दीन दयाल, भगत वत्सल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा कर्त प्रतपाल। आद पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत। हम निर्गुण यार नीच जान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोक पाए, एक निमक हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई। वो भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत। पली सो करनी सो बातन वंत, हृदय वसे पूर्ण गुरमंत। साध संग प्रभ देव निवास, सर्व सुख नानक प्रकास। श्लोक। सर गुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप। आपन किया नानक आपे ही फिर जाप। अष्टपदी। जब कार्य कचना दृष्टि, तप आपन तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समाध, तब बैर विरोध के संकमात। जब इसका वर्ण चेन न जाप्त, तब हर सो कहो किसे व्याप्त। जब आपन आप पार ब्रह्म,
तब मोह कहाँ किस होवत परम, आपन खेल आप वर्ती जा, नान करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभु केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी। जब एक है हर अगम अपार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी ज्योत तरह, तब कौन निडर कौन तब कौन निडर कौन कत डरे। आप अनचलित आप करने हार, नाम ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुखा पनासन, तेज नंबर कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए, तब जम की त्रास कहो किस हुए। जब अवगित अगोचर प्रभु का, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ रंजन अगोचर गा दे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तय बिन मैल कहो क्या तो होता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तय कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तय छल क्षेत्र लगत कहो कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तय किसे पूक कवन तृप्तावे। कर्ण करावन करने हार, नान करते का नाहे सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कौन माए बाप मित्र सुत पाई। जय शिव कला पे प्रवीण, तय वेद कते कहाँ कूचीन। जब आपन आप उतार है, तो सगन उपसगन कहाँ विचार है। जय आपन ऊंचा अपन आप नीरा, तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। विस्मन विषम रहे विस्माद, नानक अपनी गत जानूंगा। जय छल छेद पेद समाया, उहां किसे भी आप तमाया। आपस को आप आदेश दे, उनका ना ही प्रवेश। जय एक है एक एक भगवंता, तय कौन चिंत किस लागे चिंता। जय अपन आप त्यारा, तय कौन कते कौन सुनने हारा। बहो बेअंत ऊंचते ऊंचा, नान कापस कहो आप पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंच आकार, ते गुण में कीनो विस्तार। पाप पुण्य ते पही कहावत, को नरक को स्वर्ग बन छावत। आल जाल माया जंजाल, हो मैं मोह परम पे पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार के वखियान। आपन खेल आप कर देख, खेल संकोच तो नानक एक है। जय गत भगत आप जय पिछले पासार, संत प्रताप दू पाका पे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी। आप पे कौतक करे आनंद चोज, आप पे रस भोग निर्जोग। जिस पावे तिस आपन नाय लावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार था अगणत तुले, ज्यों बुलाहो त्यों नानक दास बोले। श्लोक जी जंत के ठाकुरा पे वर्तन हार, नानक को पसरिया दूजा कह दिष्टारष्टपदी। आप कते आप सुनने हार, आप का विस्तार जाति पावे था श्रेष्ठ उपाय। आप न पाने लय समाये, तुम ते पिन नहीं किछ होए। आपन सूत सब जगत पर होए, जा कहो प्रभु जी आप बुझाए। सच नाम सोई जन पाए, सो सुंदरसी तत्का वेता। नानक सगल श्रेष्ठ का जेता, जी जंत सबता के हा दीन दयाल नाथ को नाथ। जिस राखे तिस को नाम मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस्ता जवर कहाँ को जाए, सब सिर एक निरंजन राए। जी के जुगत जाके सब हाथ, अंतर बार जानो सात गुण निधान। बेअंत पार नानक दास सदा बलहार, पूर्ण पूर रहे दयाल सब उपरोत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जाने रहो व्याप। प्रतपाल लय जियन बहु पात, जो जोर च्यो सो तिस है त्यात। किस पावे तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए। मंत्र विश्वास कर मान्या, कर्ण हार नानक एक जान्या। चल लागा रे कहना है तिसकी आसना वृथी जाए। सेवक कौ सेवा बनवाई, हुकम बुझ परम पद पाई। इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार। बंधन तोर पे निर्वैर, अंदिन पूजे गुर के पैर। ये लोक सुखी है पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभा पह मेले। सात संग मिल करो आनंद, गुण गाओ प्र परमानंद। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार। अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्रांतरण का हे स्वाव। आठ पहर प्रभु पे खो नेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसाव हो, मन इच्छे नानक पल पाव हो। फलत फलत दोले हो स्वार, राम नाम मंत्र उतार। पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसे तिसाज प्रीखिया। मन तन नाम जब पुले बुलाए, दुख दर्द मन ते पहुँ जाए। सचवा पार करो अपारी, दरगह निवैखे तुम्हारी। एकाटेक रखो मन माहे, नानक बहु नंग आवे जाहे। इस्ते दूर कहा को जाए, उरे राखन हार त्याय।
निरपाओ जपै सकल पौ मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभु राखै तिस नाहि दुख नाम जपत मन होत सुख। चिंता जय मिटै अहंकार ते जन को कोई न पहुँचन हार। सिर ऊपर ठाड़ा गुरसूरा नानक ताके कार्ज पूरा। मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सो होत निहाल ताके निकट ना आवत काल। अमर पहे अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी। संत संगंत प्रवडीटा नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्कट माहे अनेक रंग नाना दिष्टा है। नौ निद अमृत प्रभु का नाम देही में इसका विश्राम। सुम समाध अनहत है नाद कहना जाए ये चरज विस्माद। तिंदे क्या हिसाब दिखाए नानक ते जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत काटे कट व्याप रहा भगवंत। तरण माहे आकाश पयाल सर्व लोक पूर्ण प्रतिपाल। बन तीन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंट दहत से समाहे। तिस्ते पिन नहीं कोठाओ गुरु प्रसाद नान सुख पाओ। वेद पुराण सिमृत मह देख ससियर सूर नक्षत्र मह एक। वाणी प्रभु की सबको बोले आप डोल ना कब हूँ डोले। सर्व कला करके लैके मोल ना पाइये गुणे मोल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार रहो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन में इहो विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म। संत जना सुने सुबचन सर्व्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिसकी ए रहत सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने करण करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत तिस भवते सगली उत्पत। तिस पावेता करे विस्तार तिस पावेता एक ओंकार। अनेक कला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए। कवन निकट कौन कही है दूर आपे आप भरपूर। अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए। सर्व पूत आप परतारा सर्व नैन आप पेखन हारा। सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया। सब कह मद अलिप्त रहे जो किच कहना सो आपे कहे। आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लै समाए। इसते होए सो नाही बुरा होरे कहो किने कचकरा। आप ला करतू तत नीकी आपे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच पोत पोत अपन संगराज। ताकि गतनित कहीं न जाए दूसर होए ता सो जी पाए। तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए ले प्रभु सोए। ओ तनवंत कुलवंत पतिवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जग तराया। जन रावण का है स्वभाव जन कै संचितावे नाव। आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन का उसदा नमस्कार। आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाका नाऊ। नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद।
आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरहो। करतन के पढ़ लियो पुंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद नरक निवार उधार हो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो। चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुपंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह है आधार। उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाल हे रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर अंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभु का जय प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उदरे तिन के साथे शरण जोग सुन सन्नी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए। मिट गए बैर पहे सब रेन अमृत नाम साध संग लेन सुप्रसन्न पहे गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेव। आल जंजाल विकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभि खेप हमारी। प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सबते ऊंच पाए स्थान बोर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त हुए खेम शांत रिद्ध नव नित बुद्ध ज्ञान सब तहसित विद्या तप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सब कह मत सकल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने। ए फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मेहता की गत हुए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट प्राद साध संग मिटै संत कृपा ते जमते चुटै जा कै मस्तक क्रम प्रपाए साध सरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुने लाए प्रीत तिस जन गावे हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारे दुर्लभ देह तत्काल उधारे निर्मल स्वभाव अमृतता की बानी एक नाम मन महे समानी दुख रोग बिन से पह परम साध नाम निर्मलता के कर्म।

रुखमणि। सबते उच्च ताकि शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुखमणि। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

निदान गावीए सुनिए मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहे असमाई।

जे जोग चार यार जा होर दसोनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चलै सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदरना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया तरत तवल आकाश सुनिया दीप लो अपाताल सुनिया पोहे न सकै काल नानक।

जे को कहे करे विचार, करते कहे करने नाही समार। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जन सूत। जे को बुझे हो वैश्चार, तवले उपर किता पार। धरती होर परे होर होर, तिस्ते पार तले कवण जोर।

किता तान सवाले हो रूप केती दात जान कौन कूत किता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुत पावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पाख सार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वढ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख

तू सदा सलामत निरंकार संख नाव संख थाव अगम अगम संख लो असंख कह हिजर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग मुखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फरमाए तिव ते पाहे जेता

अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारिये अमूल भंडार, अमूल आवे अमूल ले जाहे, अमूल भाए अमूल समाहे, अमूल धर्म अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल प्रमाण, अमूल बख्शीस अमूल निशान, अमूल कर्म अमूल फरमान, अमूलो अमूल आख्या न जाए, आख्या आख रहे लिवलाए, आख्या वेद पाठ पुराण, आख्या पढ़े करह वख्याण, आख्या बरमे आख्या इंद, आख्या गोपी तै गोविंद, आख्या ईसर आख्या सिद्ध, आख्या कीते कीते बुद्ध, आख्या दानव आख्या देव, आख्या सुर नर मुनजन सेव, किते आख्या आखण पाहे, किते कह कह उठ उठ जाहे, एते कीते होर करे ता आखन सकह के ई के, जे बुढ़ पावै ते बुढ़ होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखै बोल बिगाड़, ता लिखिया सिरगा वारा गावार, सो दर केहा सो कर केहा, जित बह सर्व समाले, वाजे नाद अनेक संखा के ते वावन हारे, केते राग परिस्यों कहियन केते गावन हारे, गावे तोहनो पौन पानी बै संतर, गावे राजा धर्म दुआरे, गावे चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावे इंद इदासन बैठे देवत्या दर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सति संतोखी, गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मनमोहन सुरगा मछ प्याले, गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा, गावह खानी चारे, गावह खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे, सही तुदनो गावे है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर किते गावन से मैं चेतना आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई, है पी होसी जाए ना जासी रचना जिंद रचाई, रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना जिव तिसदी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करह विभूत, किंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाज है ना।

सरम खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िए बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया न जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िए सुरा सिदा की सुध

दया करनं दुख हरनं उचरनं नाम कीर्तन है। दयाल पुरख भगवान है, नानक लिप्त ना माया सो कहो टल गुर सेविया। अहंस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला चौथा। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके वस है काम तेना।

पलत मुख उजल होई है, नित त्याई हर पुरख निरंजना रहा। जय हर सिमरन पया तह उपाध गत कीनी, वडभागी हर जपना। जन नानक कौ गुर एह मत दीनी, जप हर पव जल तरना। जह हर सिमरन पया तह उपाध गत कीनी, वडभागी हर जपना। जन नानक कौ गुर एह मत दीनी, जप हर पवजल तरना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे पावन पवित्र मुखवाक तनासरी महला चौथा, इच्छा पूर्क सर्व सुख दाता हर, जाके वस है काम तेना, सो ऐसा हर त्याई मेरे जीअड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दा कोटि कोटि धन्नवाद जिन्हां ने आपां रहमत बख्शिश, अमृत वेले दी दात बख्शिश करके निवाजा है। सो हुण आसा की वार दा समां है। आसा की वार दे कीर्तन आप जी नूं सरवण करा रहे हन भाई रसपाल सिंह जी। तिन्हां पासों आप जी अमृतमयी बाणी आसा की वार दा कीर्तन सरवण करके अपने जीवन दियां कुछ कड़ियां कुछ पल उन्हां नूं सफली बनाओ। सतगुरु जी कृपा करन, इच्छा पूर्क सर्व सुख दाता हर, जाके वस है काम तेना, सो ऐसा हर त्याई मेरे जीअड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। इतनी सेवा प्रवान करना जी, पते सांझी करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरु ब्रह्मज अंतरजामी सतगुरजी आप जी दरदी हाजिर पढ़ने हैं बेअंत गुरु सिख माई पायलो आप जी बाणी सत्कार जो बेअंत माया बैठा करते आप जी सर्व सिखी दान प्रसाद छन्ना कमला प्यार रखना खजाने पर प्रकने सो आओ गुरु प्यारी सात सिंह जी कीर्तन की इनिक सेवा प्रवान करनी हुई भुला चुका किमा करनी आओ अगले प्रोग्राम सब सत्कारियो ज्ञानी परमजीत सिंह जी गुरु घर के वजीर उन्हां पासो अज दे श्री मुखाक दे विचार गुरु इतिहास सिख इतिहास श्रवण करिए दस लो फतेह।

सत्संग जी, बोलो जी, वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास प्रतिपाच्य दसवीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लेके आए, फिर अंकित करते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरन श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है कारण उन्होंने आवैता है सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पाची के पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदार दत्यंतर के खालसा से बोलो जी वाहेगुरु। गरीब नवाज आप जी के पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वंड छकिया देख चलाई पे वाहे देख डिट किया तो ना प्यारे से त्यार की कमाई दस अंतर के बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंह सिंघनिया धर्म हे सी दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुवाइया चरखड़िया के चढ़े आलना चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा से किसी तरीके सत्संग बहाय तिना की कमाई दस अंतर के बोलो जी वाहेगुरु। पंजा तख्त गुरुद्वारा दत्या अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। नाम चेता है चित आवण का सदका सर्व सुख हो है जहां जहां गुरु खालसा साहब चरियात देख देख की फतेह बृत की पैस पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान मसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दर्शन इशनान क्योंकि चंडे मूंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा का मन नीवा मत उची मत पत के राखे आप वाहेगुरु। गुरु की बनवाज पंथ सदाश दताज दियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जी पंथ नछोड़िया गया सिंधार सिवास महासदा अपने खालसा जी ने बख्शो ये न्योटिया की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार जियो दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ताने रास। ये गिर नवाज जी आप जी के चरण कामना दरदास दतार जी आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाशवान हो संगतों दर्शन कर दे के निहक दतार जी हो बेहद बाणियों के पाठ हो गिर नवाज दतार जी हो बख्शिश करो उपरंत रागी सिंह पुत्र गुरबाणी के कीर्तन गायन किए ने अपरत गिर नवाज विद्वान भी रहने अज जो पुना मेरी कथा विचार की आप कृपा करो हूं यहां भुला चुका नहीं माफी बख्शो पढ़ी से बाणी सोच के सच कर पुराण गुरबाणी का भाव सारिया संगतां हिरदा इंसान की कृपा करो जी अगो तो शुद्ध पितर बाणी तानी पर बुद्धि बख्शिश करो। गुरु महाराज इस खुशी में आप दी मक्खियां दातां विचों पितर कड़ाप है देखा त्यार कर हदतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सत्संग दृष्टा लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। एक बिन बाज आप जी मक्खियां दातों के लंगने तुर सवे प्रवान करनी ददार आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैली संघा सिंगणियों तंदुरुस्ती बख्शो चाटी करा बख्शो सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना में कृपालता करो। गरीब नवाज जी कृपा करो दतार बख्शिश करो गरीब दतार पिता जी हो ग्रंथ सच्चे पातशाह आप चरण कमल दास पिता जी बख्शिश की है सेवा उद्दम बख्शे आप जा के सेवादार भाईंदर जीत सिंह राय के जन्मदिन की खुशी दतार जी परिवार वालों एक गरीब नवाज 61 काट लड़ आप चरण भेटा करने प्रवान करो दतार बख्श कर सेवा की हाजरियां प्रवान करो भेटा प्रवान करो कृपा करते हैं इंद्रजीत सिंह राज तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो गुरसिखी ने आप जात बख्शा चढ़ती कला बख्शी करने की बात दर्द चढ़ती कला जीवन बख्श करो सारे राय परिवार तंदुरुस्ती सुख शांति चढ़ी कला करनी कमाइया सफल करो दाते आप राज रखो जी गुरु गरीब नवाज कृपा करो अमृत वेले तो लैके दाते आई हैं साफ संगत हाजरी दर प्रवान करो घड़ियां लिख लाओ संगत दरते तिर पर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गरीब नवाज कृपा करो आप बेचारा सेवा कर रहे सारे टैलिया सिंह सिंगणियां तंदुरुस्ती बख्शो चढ़ी कला बख्शो सदा इस तरह अपने चरना सेवा की भावना की बात करो दार मेहनत करो दूर।

ज्यों मच्छी त्यों मानसा पवै अचिंता जाल राव सब जग बादू काल को बिन

दर सच्चै सच्यार सी चाने ज्यों पंखिया जाली बदक हाथ गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगै साथ।

सुख कौ मांगे सब को दुख न मांगे कोए, सुख है कौ दुख अगला मन मुख बूझ न होए। सुख दुख सम कर जानी है शब्द पे।

अखर पढ़ पढ़ भुली है, भेखी बहुत अभिमान, तीर्थ नाता क्या करे, मन महमैल गुमान, गुरबिन किन

शरीर कटाई सिर कर वत तराय तन है मंचल गाली है पी मन ते रोग न जाय हर नामे तुल न पुजई।

यही समझाना चाहते हैं। ते भाई साहब जी की बाणी ते मोर लगी हुई है गुरु अर्जन साहब जी की, सतसंगत बोलो श्री मोर सतगुर दी है प्रवानगी। इतिहास में वचन आता है कि भाई साहब जी तुहाडी बाणी कुंजी ते साडी बाणी ताला। कलयुग दे विच रह के संसार विच रह के जदों गुरसिख आप जी की बाणी गुरु नानक की बाणी जदों रला के पढ़ी जाएगी ते सतगुरु ने कहा सी भाई साहब जी जिन्हां ते मन दे जंदरे वजे होए ने ना वो कुंजी रूप बाणी नाल खुल जाए। भाई साहब के बचना समझिए वो की प्रकार है, वो केड़ी जुगत है, केड़ी राह है, केड़ा रस्ता है जिदे नाल असल विच गुरसिख बनिया जा सके।

चांजी चांजी उत्थे गुरु की सेवा एड ग्रंथी साहब आप जिन्हें हुणे चढ़ाई की थी उन्होंने परिवार माता जी थोड़ा चिर पहले दास उत्थे कीर्तन ते भी गया सी बहुत प्यार करते सी गुरसिख ते बड़े देखे पर उन्होंने वर्गा गुरसिख भी कितने दूर दुराडे उन्हें जाना सी असी उस वक्त थोड़े दिनों